आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन नवीन, माफ कीजिएगा इसे एक बार फिर सुनिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चान्रतम। अर्थात प्रेम से क्रोध को जीतें, उत्तम व्यवहार से दुष्ट मनुष्य को जीतें, दान से कृपण को जीतें और सत्य से झूठ को जीतें। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

एक विशेषता है भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 306। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इस श्रृंखला की नवी कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से सुनिएगा हम हैं राही प्यार के।

सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से सुनेगा चित्रलोक। सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अक्षय कुमार पर। आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेलुलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 से सुनिएगा रंग तरंग, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से।

सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नग में, 3 बजे दोपहर ये समय होता है सखी सहेली का। इसके अंतर्गत आज के विषय हैं पारिवारिक मिलन समारोह का महत्व, शब्द हमारा विचार आपके के अंतर्गत विश्वास, साड़ियों का संसार, मेखला चादर आसाम, व्यंजन साबुत अनाज के व्यंजन। संवादक हैं सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान सुनिएगा, कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत आपको सुनाएंगे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण। तराने नए पुराने शाम 5:30 से झरोका सुनेगा, शाम में 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा, शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, रात 8 बजे से आपको सुनवाएंगे हवा महल के अंतर्गत प्रहसन मोहब्बत का इम्तिहान, लेखन और निर्देशन मदन मोहन खन्ना का, रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 9 बजे से, रात 9:30 सुनिएगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अक्षय कुमार पर। रात 10 बजे से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 9 आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 306।

रावण को चुनौती देने के लिए श्रीराम ने एक ऐसे वाण का संधान किया जो उसके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को काटता गिराता तरकस में वापस आ गया। उपस्थित असुर समुदाय आतंकित हो गया। सबको भयभीत देख रावण ने अपने पराक्रम और निर्भयता का उद्घोष किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में सभी सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने की गायकी की बात हो रही है, हमने इसकी आलाप की कुछ जो खासियत है उसके बारे में सुना है।
2: जयंत जी, वैसे भी देखा जाए तो कौन सा भी राग होने दो, आलाप ये राग का एक प्राण है।
1: जी जी,
2: राग की पहचान होती है तो आलाप से आलाप होती से है। तो आलाप का जो विस्तार है वो हमारे घराने में बहुत यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी,
2: आलाप से राग का विस्तार करना किराने घराने में गायन की शुरुआत एक शांत धीमे और विस्तृत आलाप से होती है।
1: अच्छा,
2: इससे राग का स्वरूप धीरे धीरे श्रोता के सामने प्रकट हो जाता है। यानी विलंबित लय होने के कारण वो आलाप प्रधानता यानी एक एक आलाप एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक एक एक स्वर पर जाके विलंबित आलाप लय भी विलंबित।
1: जी जी जी,
2: आलाप तो आराम से होते हैं, आलाप को हम तान का ये नहीं दे सकते। तो जिससे प्रत्येक स्वर को पूरा समय और महत्व मिल सके ऐसा ही विलंबित लय लेकर ये आलाप आगे जाता है। इस घराने में तानों की अपेक्षा स्वरों की शुद्धता मधुरता और सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाता है।
1: जी,
2: और अगर तान भी अच्छी होनी है तो आलाप अच्छा होना है। आलाप अच्छा होना है तो सुर को पक्का करना है।
1: जी,
2: सुर पक्का है, एक स्वर पक्का हुआ तो दूसरे स्वर जब हम जाते हैं, दूसरा स्वर अगर पक्का हुआ तो ही उसके आगे का स्वर पक्का लगेगा, नहीं तो आगे का स्वर नहीं लगेगा।
1: अच्छा,
2: मींड और सूक्ष्म श्रुति का प्रयोग जो हम करते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर तक अत्यंत कोमल और प्रवाहपूर्ण मींड हमारे गायकी में ली जाती है। तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग करके राग का भाव उभारा जाता है। इसीलिए इसकी जो कलात्मक तरह है ना, ये तो किराना घराना में

0: विशेषता,
1: एक विशेषता है
0: जी,
1: एक स्वर का विस्तार करना, प्रत्येक स्वर का ठहर ठहर कर उसकी पूरी मधुरता गहराई के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही स्वर विस्तार की विशेषता हम मानते हैं और उसे माना जाता है। आलाप का उद्देश्य केवल स्वर दिखाना नहीं बल्कि राग के भाव, रस और वातावरण को श्रोता तक पहुंचाना होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: हम कहते हैं कि स्वर जो है उसको अर्थ हम नहीं दे सकते, लेकिन राग में जो वादी संवादी रहते हैं, राग का जो रस रहता है, राग का जो हम करुण रस, भक्ति रस रहता है, इसके ऊपर राग का स्वभाव होता है
0: जी, जी, जी।
1: वही स्वभाव के द्वारा हर एक स्वर में राग के वो प्रकट होता है।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मीनिंगफुलनेस जो है ना राग में, शब्द का है ही लेकिन स्वर का भी मीनिंग होता है। धीरे धीरे विकास करके राग का विकास क्रमबद्ध हम करते हैं, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक की ओर बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है
0: जी।
1: तो फिर संयमित तानों का भी प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। आलाप के बाद जब तान आती है ना, परंतु राग की गरिमा और स्वर सौंदर्य को बनाए रखते हुए ये तान हम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप ये आलाप प्रधान शैली
0: जी,
1: और आलाप प्रधान शैली और उसमें जो शांत रहने के एक तरीका है
0: जी,
1: वो सुन के ही उसके महसूस कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: हमारे किराना घराने के और भी बहुत अच्छा कलाकार है कैवल्य कुमार गुरव। कैवल्य कुमार गुरव जी का गाना जो है
0: जी,
1: उसमें ये आलाप प्रधानता बहुत ही अच्छी तरह से वो करते हैं। उनका अभोगी थोड़ा सुनेंगे।

0: स्वर भी बहुत प्यारे हैं अभोगी के और एक बहुत अच्छा गाना है, तू फिक्र को धुएं में उड़ा।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
2: मैं जिंदगी

0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
0: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में आन फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में आन फिल्म से, और आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस फिल्म के निर्देशक कौन है, याद आ गया होगा। जी हाँ श्रोताओं, आज है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महबूब खान साहब का जन्मदिवस, इसलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको महबूब खान साहब की फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत। इतने प्यारे प्यारे फिल्म बनाए महबूब खान साहब ने कि दिल कह उठता है हम आज कहीं दिल खो बैठे। अंदाज फिल्म से ये गाना मुकेश की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद की है तर्ज़।

बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से 102.8 FM पर। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों के बाद।

भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी

0: बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा भूले बिसरे गीत। आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में, शब्द हैं शकील बदायनी के और तर्ज बनाई है नौशाद ने। फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फकीरा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं

0: सखी सहेली
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

हमारी अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दीवार फिल्म से, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: हाँ
1: क्या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में चुपके चुपके इस फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलिंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है।

0: उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनाइक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजिका

0: मांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
2: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, UAE ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारे, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से UPI का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच

महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन की कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहां किसी की मदद कर सकते हैं वह जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सफर कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ।

और फिर एक समय आता है जब मुसाफिर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया कोई बाद में, किसी का सफर लंबा है किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

आकाशवाणी का ये मुंबई केंद्र है 102.8 FM पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय मराठी समाचार आप सुन सकेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत लचीला।

0: भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर टीएमटी बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: लीजिए अब सुनिए पटियाला हाउस फिल्म का गाना। आवाजें हैं सूरज जगन और एलिसा मेंडोंसा की। अनविता दत्त ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रकीब आलम का लिखा और देवी श्री प्रसाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है जावेद अली की, फिल्म का नाम पुष्पा।

दोस्तों लीजिए अब सुनिए दिव्या कुमार और प्रगति जोशी की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भवेश जोशी सुपर हीरो।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की। फिल्म का नाम ओ रोमियो।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
1: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
6: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जींचा संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18-40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
8: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
9: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए पालोमी की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गाना। स्वानंद किरकिरे हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंच म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। गीतकार हैं तनिष्क बागची और हरबी सहारा, और संगीत दिया है तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरबी सहारा ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपहले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6, तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपया इनाम।

फिल्मों में आए इस नए एक्टर को लोगों ने शुरुआत से ही खूब प्यार दिया। अपने स्टंट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं चांदनी चौक में जन्म हुआ उनका और पले बढ़े। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और माता का नाम अरुणा भाटिया है। पिता पेशे से भारतीय सेना में अधिकारी थे। अक्षय के पिता को कुश्ती में भी रुचि थी और अक्षय कुमार भी खेलों में खूब रुचि रखा करते थे।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राजश्री द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशवराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में ऐतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार

संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्य रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एंड इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंह स्किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओं, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माय गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

ये फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माई गॉड 2।

कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़ कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय। कुमार भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार,

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मरजावां, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
2: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी, लेकिन जब ये तय किया होगा कि अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
2: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा, और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था, और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया, और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको, दूरदर्शन कशीर, उस पे मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड, कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पे काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
1: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप

0: क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे यू नो, उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ यू नो बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि
0: अच्छा
1: मुंबई इसलिए आऊंगा कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा, और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा, और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
0: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित की अगर हम बात करें,
1: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना यू नो, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको यू नो गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
0: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
1: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
0: जीना या मरना या?
1: जी हाँ।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बन जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
0: जी।
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा
0: जी।
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहाँ से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा
0: जी।
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था। और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो। लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
0: और मुश्किल आमतौर पर इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
1: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है
0: जी।
1: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज़ कर रहा होता तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना। और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
0: जी, वो स्वीकार करना बहुत
1: जरूरी है। सिर्फ उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
0: जी।
1: मैं मानता हूँ यूनिवर्स और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज उनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
0: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको,
1: बिल्कुल,
0: और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
1: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
0: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
1: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है
0: जी।
1: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के, हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के, मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान दे के, प्रकृति पे, ईश्वर पे विश्वास रख के,

0: उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल। एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुँचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है। क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है
1: जी,
2: जब सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज़ का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से ज़रूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुनीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
2: मेरा जो कितने घंटों का पॉपुलर शो था माय का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
2: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैंने लगातार, मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे, मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये बहुत,
1: तब तक बैंक खत्म हो गया होगा, तो फिर वापस आ गए,
2: ये 2 दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
2: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, सो बहुत ड्रेनिंग था। लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
2: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे, तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
2: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है, अपना अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को, क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और यही चीज़ है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौटकर चले जाते हैं। क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है, और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है। लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए चलता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होकर
1: क्लब्स में जाते हुए या पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं, उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये बहुत जरूरी चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
0: जी, और जैसे कि आप इन दिनों टीवी, फिल्म, ओटीटी, वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा, या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो AI आ रहा है, AI की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज़्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा AI से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा।
3: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया। ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं
2: जी हाँ।
3: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सब का क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
2: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहाँ भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहाँ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में
3: जी,
2: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी मैं वहाँ जाता हूँ। और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो US की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टारकास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें
3: जी।
2: ये एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th ऑफ अगस्त को वो UK में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारी इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट

0: थे
1: जी,
0: वहाँ पर यहाँ की एक चैनल वहाँ पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहाँ पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहाँ गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहाँ कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
1: जी,
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहाँ कैसे,
0: इंडियन एक्टर वहाँ कैसे हूँ। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा, और मेरी प्रोड्यूसर was shocked कि ये कैसे है? मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो है वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं, कई बार और भी करते होंगे कुछ ना कुछ। आपके लिए फैन मूवमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा। और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का, और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
1: जी।
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है, कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ। सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैं देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं, एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो
1: जी।
0: He was the part of the show. He was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक, मैं ना फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे, और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया, और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे, और मैंने कहा काका, मतलब मेरे लिए ये एक, मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: आप फैन रहे, उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे?
1: बावर्ची एनी डे। मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से काम किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मैच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना,
0: बार बार देखी जाती थी बागवान से पहले।
1: बागवान से पहले अगर कोई फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है
0: जी। और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लगता है।
1: वो उनका स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वॉज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार
0: जी। उनका एक अलग ही चार्म था, नमक हलाल, नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें वो आते हैं कुछ और बन के आते हैं और फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया जा सकता
1: है। ये सब असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आप का अपना निजी जीवन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है, तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहाँ कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए
0: जी।
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए, तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है
0: जी।
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूं
0: जी।
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूं वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है। वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है
0: जी।
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत रैना है जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026

0: being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजंस लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है।
4: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
3: जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।
4: बिल्कुल।

Ha!

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: जी।
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था
0: जी।
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी
0: जी।
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी। तो मैंने उनको देखता रहता था। उनका नाम चांदनी था
0: जी।
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहाँ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे, तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत याद
0: की है। उन यादों तक जाता है गाना
1: जी। हाँ।
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पर सबको याद रहती है, लेकिन स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए, स्क्रिप्ट याद करने की। और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है
0: जी।
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था
0: जी।
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे। जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज बोल रहा हूं, वो याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूं, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं
1: जी।
0: तो अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे। उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने, उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आर डी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी, इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया, मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं, लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन कहां रे उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा।
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हैं हम।
1: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मज़ा आया और दोबारा आना चाहूँगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आबिदा परवीन की आवाज से, कलाम है जिगर मुरादाबादी का।

0: ये थी पिनाज मसानी की आवाज में गजल, कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

जिगर मुरादाबादी का कलाम था और आज उनकी याद का दिन है। कुछ गजलें हमने उनके नाम पेश की। आवाज थी चित्रा सिंह की। विविध भारती से यह है प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है कबाली मुल्क फिल्म से। शफकत अमानत अली की आवाजें हैं, शकील आजमी के बोल, अनुराग साइकिया का संगीत है। सुनिए ये कबाली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये कव्वाली आप सुन रहे थे यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजों में। विविध भारती से ये है प्रोग्राम रंग तरंग।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद के स्वरों में ये था राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का था और फिल्म ये एक फिल्मी रचना थी। फिल्म का नाम था मीनार।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
0: भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार का जन्मदिन है। तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से देते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां, और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। रानी मलिक के बोल हैं।

खिलाड़ी 786 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रीराम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में समीर अनजान के बोल थे। हिमेश रेशमिया का संगीत था।

0: हॉलीडे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह की आवाज में इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: पैडमैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। कौशल मुनीर के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी विजू शाह ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: आप सुन रहे थे ये गाना देसी बॉयज फिल्म से। मीका सिंह और साथियों की आवाजें थे, कुमार के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, फिल्म थी महल, और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और सही जवाब दिया, देव आनंद और आशा पारेख। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द चयन किए हैं और गानों के बोल भी लिखे, बहुत सारे गाने आपके हमारी प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन और भी गाने आप सुझाते चलिए। अगर आप में से बहुत सारे श्रोताओं की ओर से एक ही गाना आएगा तो वो गाना हम जरूर सुनवाएंगे, और हम

चाह रहे हैं कि आप गाने सुझाइए, वही गाना हम आप तक पहुंचाएं। अपनी प्लेलिस्ट वाले गाने को हम हटा देंगे। एक श्रोता ने लिखा है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, संसार की हर शय का इतना फसाना, रुके रुके से कदम खिलते हैं गुल, यहाँ बदल जाए अगर माली, ये दुनिया वाले पूछेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे भाई और भी लंबी फेहरिस्त गानों की इन्होंने बताई है, और आज की इबारत के हिसाब से बिल्कुल सही बताई है इन्होंने गानों की फेहरिस्त। और एक श्रोता ने लिखा है, दुनिया कदम फूल रोशन लोग सौबा रिश्ते, ये हो सकते हैं आज के गाने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। फिल्म दोस्ती के इस गाने में जीवन का फलसफा मजरूह दादा ने लिखा था, जो शायद सबकी समझ से बाहर है, लेकिन ये सच्चाई है। भले मंजिल दूर सही, लेकिन सुख दुख सहते हमें बढ़ते जाना चाहिए। भले ही रास्ते में कांटे और पत्थर सब मिलते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है और एक दिन उस मंजिल को पाना ही है। भाई आपने भी काफ़ी खूबसूरती से इबारत पिरोया है, तो हम चाहते हैं कि आपके माफ कीजिएगा, आपके जहन में अगर कोई बात आती है तो जरूर लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल जरा सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और ये सोचिए कि यही गाना आपने सोचा था कि अभी हम सुनवाएंगे, या फिर कोई और गाना आपके जहन में आ रहा है। वैसे बहुत सारे शब्द आज की इबारत में हैं, सवाल जवाब दुनिया है, और रुकने की बात है, आगे बढ़ने की बात है, और सलामत रहने की बात है, कितनी सारी बातें हैं। तो आप ज़रा गाने हमें सुझाते चलिए और पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। फिलहाल बताइए ये गाना आपने सोचा था और फिल्म का नाम बूझिए।

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, फिल्म का नाम उस्तादों के उस्ताद, और कुछ श्रोताओं ने फिल्म का नाम गलत भी पूछा है, जबकि ये गाना तो अक्सर विविध भारती से आप सुनते ही रहते हैं और वैसे भी सुनते होंगे, आपके संग्रह में ये गाना ज़रूर होगा। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि चाहतों से भरी ज़िंदगी में सपने आरामगाह की तरह होते हैं, जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, ज़िंदगी सपने में अपना सुकून खोज ही लेती है। ये अलग बात है कि सपने कभी अपने नहीं होते। वैसे भी जीवन किसी और का लिखा हुआ उत्तर पत्र नहीं है, एक खाली पन्ना है जिस पर हर निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ हर साहस एक अध्याय और हर एक भूल सबक है, इसलिए जब कभी रास्ता धुंधला लगे तो किसी कहने सुनने का इंतजार मत करो, एक छोटा सा कदम उठाना, क्योंकि रास्ते चलने वालों के नीचे बनते हैं, खड़े रहने वालों के सामने नहीं। क्या बात लिखी है भाई, आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कौन सा वो लम्हा था जब आपके जीवन में रुकावट आई, पढ़ाई के दिनों में, नौकरी के दिनों में, और अपनी कामयाबी हासिल करने के दिनों में। हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, और कभी न कभी ऐसा लम्हा आता है जब हम टूटने लगते हैं, हारने लगते हैं। कोई एक ऐसी शक्ति होती है, कोई ऐसी किसी की बात सामने आती है, कोई ऐसा गाना सुन लेते हैं जब हमारे भीतर हौसले का संचार होता है। तो उस लम्हे के बारे में बताइए कि कौन सा वो क्षण था जब आप अपने खुद ही से हारने लगे और लगा कि बस अब तो जीवन ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। अपने अनुभव साझा कीजिए, साथ में पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। अब आपको सुनवा रहे हैं मौसम फिल्म का गाना, आपको पूछना है हीरो हीरोइन का नाम। बहुत आसान सवाल है वैसे, इबारत के कौन से शब्द इसमें शामिल हो रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। जो लोग हीरो हीरोइन का नाम नहीं पूछ सकते, बताएं गीतकार और संगीतकार का नाम।

कई बार हमारे कदम रुक जाते हैं जब हम थक जाते हैं, लेकिन भीतर एक बात आती है कि हम फिर चल पड़ते हैं। ऐसा लम्हा आपके जीवन में कब आया?

रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, ये हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि ये गीत प्रेम इंतज़ार और अधूरेपन की एक खूबसूरत दास्तां है। गुलजार साहब के शब्द दिल को छू लेते हैं। संगीत मदन मोहन का बहुत ही धीमा और सुरीला है। ये गाने के उदास और तनाव माहौल को पूरी तरह से उभारता है। लता मंगेशकर की आवाज़ का ठहराव कमाल का है। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं इस तरह की बातें और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। संजीव और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अरे वाह, चयनित गीतों में दूसरा गीत सुन रहे हैं। और कई श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारी लिस्ट के ये गाने सुनाए जा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतज़ार है, ये गाना आना चाहिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये सिर्फ एक गीत की पंक्तियां नहीं है, ये मेरी आत्मा का वो उजाला है जिसने मुझे हर बार अंधेरे से खींचकर बाहर निकाला है। जब भी दुनिया ने कहा कि सब खत्म हो गया, तब इस गीत ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। दरअसल ये गीत ऐसे ही है, विविध भारती से जो गाने आप सुनते हैं अक्सर हमारे सुख दुख के साथी हो जाते हैं। कई बार पढ़ाई के दिनों में, छात्र जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लगता है कि अब क्या होगा। इम्तिहान जब करीब होता है और जब रिजल्ट आता है, परिणाम घोषित होता है, तब दिल की धड़कनें बढ़ी होती हैं। जब आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तब क्या हाल होता है, लगता है कि बस अब तो ख़त्म, टूटन सी होती है। तो ऐसे जो लम्हात आपके जीवन में आए हैं, उन्हें आप साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और साथ में हमारी टिप्पणियों के जवाब भी दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दूर गगन की छाँव में फिल्म का गाना, राही तो रुक मत जाना। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने, ये वाला गाना सुनवाए। गानों की लंबी फहरिस्त भेज रहे हैं हमारे श्रोता, तो चलिए अब यही गाना सुन लिया जाए, दूर गगन की छाँव में। आपको बूझना है संगीतकार का नाम और साथ में गीतकार का नाम। आवाज किसकी है ये भी बताइएगा, किसकी है आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन।

कई श्रोता इस गाने में भ्रमित हो गए। हेमंत कुमार की आवाज, किशोर कुमार का संगीत, लेकिन कई श्रोताओं ने उल्टा कह दिया, किशोर कुमार की आवाज, हेमंत कुमार का संगीत। तो भाई, शैलेंद्र की रचना थी, हेमंत कुमार की आवाज, किशोर कुमार का संगीत, फिल्म दूर गगन की छांव में। और ये गाना जब बहुत आप परेशान होते हैं तो दुख पर जैसे फाहे का काम करता है, जैसे औषधि का काम करता है, और हम सबके मन में उत्साह का संचार हो जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने लगभग इस तरह की बात लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे गीत 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद का बेहद प्रसिद्ध और रूहानी गाना है। हमने जो पहले गाना सुनवाया उसके लिए इन्होंने लिखा है। और मोहम्मद रफ़ी ने इसे अपनी जादुई आवाज़ से सजाया। संगीतकार के का संगीत बहुत ही सुरीला है और रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे इस गीत की आत्मा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस रंग बिरंगी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अजीब से लोगों से मिल जाते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन जिन लोगों के राह में ऐसे लोग आते हैं उनके भीतर जीतने का हौसला भी होता है। वही तो बादलों को चीरते हुए पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी कामयाबी तक पहुंच ही जाते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी कामयाबी में कौन सा ऐसा वक्त आया जब आपको ऐसा लगा कि आपको कामयाबी से पीछे हटना पड़ रहा है, या कोई ऐसा रोड़ा, ऐसा कोई पत्थर आ गया जिसके कारण आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। कई बार जिम्मेदारियों के बोझ तले भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो ऐसी कोई बात आप साझा कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव भी साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब आपसे हम कई सवाल पूछ रहे हैं। आपको पूछना है निर्देशक का नाम, आपको पूछना है निर्माता का नाम, पूछना है कलाकारों के नाम। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, इसमें कौन सा शब्द इबारत वाला आता है ये भी बताइए। कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे? दोहरा देते हैं सवाल, बूझिए निर्देशक और निर्माता का नाम, कलाकारों के नाम, और बूझिए इबारत में कौन सा शब्द आया है जिसके लिए ये गाना सुनवाया है, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी। और इस शब्द के बहुत कम गाने हैं।

जबक फिल्म का गाना था। हमारे श्रोताओं ने जवाब इसका सही दिया, कम श्रोताओं को जवाब शायद पता था इसके बारे में, कम जवाब आए हैं। अब दुनिया और दुनिया से जुड़ा हुआ एक गाना और आपको सुनवा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था सलामत शब्द जो इबारत में है उससे जुड़ा हुआ गाना आप याद कीजिए, तब तक हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म बहू बेगम। इसकी भी इस गाने का भी जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और लिखा है इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द आते हैं, कुछ श्रोताओं ने लिखा है, जरा आप भी बताइए फिल्म बहू बेगम और बताइए किस हीरोइन पर यह गाना फिल्माया गया है, और साथ में बूझिए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म बहू बेगम

बहु बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। और पूछा था हमने हीरोइन का नाम, सभी ने बताया सही बिल्कुल, मीना कुमारी और हीरो प्रदीप कुमार। और अब सलामत रहने के लिए तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने सुझाए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रा पूछ लें कि कई श्रोताओं ने खामोशी फिल्म का गाना चुना है, वो शाम कुछ अजीब थी, और शाम के बहुत सारे गाने सुझाए हैं, तो आप सभी तय कीजिए कि कौन सा गाना शाम वाला सुनवाए। अभी फ़िलहाल हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ था और मैं दुखी इस सोच में कन्फ्यूजन में था कि आगे क्या। मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती के गीत बज रहे थे, उस समय गीत बजा आज फिर जीने की तमन्ना है गाइड फिल्म का। मैं उत्साह से भर गया और निर्णय लिया कि जॉब ही करना है। क्या बात है भाई, रेडियो विविध भारती आपका किस तरह से साथी होता है, बड़ा अच्छा लगा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन तुम्ही से दुनिया दूसरा गाना, अब तो सलामत, फिर फिल्म प्यार ही प्यार के दो शीर्षक गीत में से एक। और आगे एक श्रोता ने लिखा है कि सलामत से मुझे सिर्फ एक ही गाना बहुत पसंद है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये गाना सुनाती हूँ और गाती भी हूँ, अपने सभी दोस्तों को सुनवाना चाहूँगी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन अभी आपको ये गाना हम नहीं सुनवा रहे हैं, बल्कि ये गाना सुनवा रहे हैं, ज़रा फिल्म का नाम बूझिए और जल्द बूझिएगा फिल्म का नाम। गीतकार का नाम हम बता देते हैं इंदिवर, संगीतकार का नाम ज़रा आप बताइए, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम आपको बताना है।

भाई, इस गाने का जिक्र तो बहुत सारे श्रोताओं ने किया था और हमें लगता है कि आपकी और यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट की बात गाने एक हो गए। फिल्म थी पारसमणि और गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। आप सभी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। एक श्रोता ने लिखा है कि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, जिंदगी के रंग कई रे, मैं राही अनजान राहों का और मेरा नाम अनजाना, रुके रुके से कदम, गाने के बोल बहुत सारे लिखे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ये पर्वतों के दायरे, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं गानों के बोल जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब नए मकान में शिफ्ट हुई तो उस समय कॉलोनी काफ़ी वीरान थी, लौटते समय रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। हमने आपसे पूछा था कि कभी ऐसा मौका आया जब आप राह भूल गए हों, क्योंकि एक ज़माना था जब हम सबका बचपन था तब सोशल मीडिया या गूगल राह दिखाने वाला नहीं था। अब बात सपने वाली रह गई है, तो सपने वाला कौन सा गाना, ये जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और है? अगर कोई और गाना आपके जहन में तो बताइए। फिलहाल बुझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। आपके जहन में सपने वाले और कौन से गाने आए हैं इस समय?

नई रोशनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया और अतिरिक्त जानकारी भी दी है माला सिन्हा, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, राजकुमार, तनुजा और अनवर हुसैन होते हैं फिल्म में कलाकार। और बहुत सारे श्रोता अगले गाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये गाना सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। एक सवाल यहाँ पर और बनता है, गायक का नाम भी जरा बूझिए।

कुछ श्रोताओं ने गायक का नाम बूझ लिया है, आपको पता है तो जरूर बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी।

शबाना आज़मी होती हैं फिल्में, और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। साथ में हीरोइन सुप्रिया पाठक भी हैं, जुगल हंसराज बाल कलाकार के रूप में आते हैं। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी, और जो हमने ख़ास सवाल पूछा था अनूप घोषाल की आवाज़ में ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित बूझा। फिल्म थी मासूम, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की जटिलता को बताया गया था इस फिल्म में, और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि कोई गाना सुनवाएं, सिर्फ इतना बता देते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमेशा की तरह ये लाजवाब प्रस्तुति थी, तो हम ये भी आपसे कहते चलें कि हमेशा की तरह आपकी टिप्पणियाँ लाजवाब थी। अब आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन के कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है, न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहां किसी की मदद कर सकते हैं वह जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सफर कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में।

और फिर एक समय आता है जब मुसाफिर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया, कोई बाद में। किसी का सफर लंबा है, किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं, उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिक्सानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: मदर इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आइए अब सुने नौरंग फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। लिखा है इसे भरत ब्यास ने, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हारी बोली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: छलिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी कमर जलालाबादी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शब्दकार थे भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। रचना है राजा मेहदी अली खां की, संगीतकार मदन मोहन। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया हमें सोनाली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, और ये जो समारोह ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं। और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ, तो एक राहत भी मिलती है। और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या

0: हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को जो परिवार के सदस्य है उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं। और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
1: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेल जोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना
1: वो
0: कम हो गई है, एक दूसरे को हम शिकायत तो कर देते हैं, समझ नहीं पाते एक दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
1: और कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं होता है। किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जाइटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उबरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारे पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
1: वही एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है, पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में कहा। काश हम सभी ऐसा समझें, सोचें और इस तरह की जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
1: या उसमें जो है ना जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
0: हम अकेलेपन के आदि हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार मेरे बच्चे, जिस तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
1: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है, उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं, गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
0: अपनी तो चीजों को देना सीखेंगे। हाँ। जब आप उन्हें बताएंगे कि बेटा आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है। एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम विश्वास सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है, और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
1: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, भाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी
0: हैं जी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं, और उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
1: एक साथी कहते हैं, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
1: और अब गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
2: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
2: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियां इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
2: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
2: पहन सकती हैं
0: जो नौकरी में

0: जाती है वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
1: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है। और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। और सोनाली, अगर अब आप कहें तो एक गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना
1: जी। और एक हमारे सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहाँ की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई?
1: हाँ ना, आज बोलती क्या मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ, ये कहती ना कि मेखला है, यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: पर है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही है, उठ, तेरे लिए मेखला लेकर आई। सच में तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
1: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है,
1: सरप्राइज गिफ्ट
0: मिल जाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए हमारे, और हमने एक नया आज शब्द लिखा है, विश्वास, उस पर हम बात करने वाले हैं
1: जी।
0: जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, भावार्थ लिए, और हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास पर।
0: उन्हें विश्वास है ना हम पर कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे, और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है
1: जी।
0: तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा है
1: जी। एक साथी कहते हैं, विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु, शक्ति या विचार के सत्य, क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूँ तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसी रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी जरूरी
0: है।
1: यस, आई कैन डू इट।
0: बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास, ये दो शब्द बहुत जरूरी है जीवन में। खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना। हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है, बस यही तो विविध भारती की खासियत है। आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा, जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है, व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहाँ विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। किसी पर इतना भी विश्वास न करे कि बाद में पछताना पड़े, और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
0: बहुत
1: कितना सुंदर उदाहरण देखिए लिखा है,
0: बहुत सुंदर, कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास भी न करें। मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच में, जो हमें मेंटेन रखनी होती है, बैलेंस बनाकर जीवन में चलना पड़ता है।
1: और जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल
0: होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता, बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है, लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना जितना महत्वपूर्ण होता है उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है,
1: जीवन का सारी
0: लिख दिया है कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास बनाते। एक सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में, है ना
1: जी,
0: टूटने में, तोड़ने में आप एक सेकंड लगाते हैं।
1: तो
0: कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
1: एक साथ ही कहते हैं, एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं टूटता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
0: सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं। और इस धागे में जब स्नेह, सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है, फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
1: और अब गीत सुन ले,
0: गीत सुन लेते हैं। हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है ना
1: कि गीत सुनवाएंगे
0: बिल्कुल

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बिठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर, आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिससे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है, और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल मिलती है, और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं
0: और फिर क्या करेंगे हम,
1: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।
2: ये रातें ये मौसम।

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूं और विविध भारती से जुड़ा हूं। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अरे वाह, अभी उससे पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं आज कार्यक्रम, और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी है
0: जी।
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या व्यंजन पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए है। फिर ऐसे ही खाए, हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी।
1: अरे देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही सकते,
0: और इसे बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस उसे रात को भिगोना है हमें
1: और सुबह ककड़ी और प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं, नमक और काली मिर्च डालकर भी।
0: और अगर वो बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन गए
1: क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को, यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसालों, ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं, इसके डोसे, लड्डू, रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरे डोसे, कम घी, गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही जवार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा, यानी जो जवारी है या फिर बाजरा है, इसका खिचड़ा कहते हैं, इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है बाजरा और जवार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़े की बात चली है ना तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे बड़े पतीले पर इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे पकता रहता है, घंटों। फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है।
0: बहुत ताकत होती है, बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग जो बड़े बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने।
1: और इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं। हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़े का सेवन करते थे, तो बाकी वो गायों का काम करते थे तो उनकी शक्ति देखने लायक होती
0: जी। एक साथी कहते कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं, बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं, साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं, भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और उन्हें हींग, नमक, हरी मिर्च बारीक काटकर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें या इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही
1: अच्छा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज, टमाटर, ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले, छान ले, फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने और बाद में कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस

0: उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा लिया, प्रेस कर लिया उसे, चपटा चपटा कर लिया, और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते में। उसको तलते भी है और कुछ कुछ लोग सेक लेते हैं,
1: सेक ले वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें
0: जी,
1: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना
0: जी।
1: और अब एक गाना सुन ले
0: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही,
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही करती है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
0: खिलता मुस्कुराता रहना चाहिए।
1: तो हंसी और हंसाइए, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: वाह मंदाकिनी जी, आपको ही मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
1: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
1: जी जी,
2: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदन वार से लेकर हवा महल और अच्छा, छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
1: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
2: जी बिल्कुल सही बात है।
1: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी धूप छांव, आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
2: जी हाँ जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
2: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की, ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएँ, ऐसी कविताएँ लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
1: अच्छा।
2: हाँ।

0: तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
1: हाँ।
0: तो रेडियो कार्टून जो है उनके उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया, तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी 2-3 कड़ियाँ प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
1: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
0: जी,
1: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
0: बस बस यही समझ लीजिए, अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
1: बिल्कुल, वो बहुत कुछ गागर में सागर का काम करता है।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा
1: जी। तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
0: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज़ को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुँचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आस पास की चीज़ों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, नाव पर नजर रखना, तो ऑब्जर्वेशन, और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं। क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी भाषा से, उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने जी, देवेंद्र जी, कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर की दीवारें आपने खराब,
0: घर की दीवारें बहुत खराब करते थे और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो।
1: हाँ।
0: तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहाँ संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या
0: तो
1: बात है?
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता है?
1: तो 12 साल का बच्चा।
0: हाँ वही है,
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने ये कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही, तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना है और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है।
1: अच्छा।
0: और उनकी जो पत्नी देवी हैं वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही हैं चांद की तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। तो उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी,
0: था
1: जी।
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था
1: जी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया। जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्यक्रम का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम
0: जी।
1: बताइए
0: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से इन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है। तो ये सब
0: तो, चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी। हाँ,
0: जब
1: बिल्कुल,
0: हम कार्टून पर नजर डालते हैं तो
1: मतलब ये बिल्कुल
0: वो जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता है।
1: हाँ, कहता है कई बार उसे जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी।
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है। और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को।
0: जी जी जी। तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन नहीं तो निकलनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पर यही था कि जब शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुँच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे। तो
0: अच्छा।
1: आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने
0: मतलब आप इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून?
1: जी हाँ जी हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो रिकॉर्ड।
0: हाँ, 17 कार्टून आप एक दिन में बना,
1: एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड है। मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, बजट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब कार्टून्स।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
1: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, ये सब खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं देखते हैं। हाँ, सामाजिक विषय होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो।
0: हाँ।
1: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें, ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए
0: जी,
1: वो चीजें
0: मतलब चुटकुला भी ना लगे।
1: हाँ,
0: कि आप किसी जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी ना लगना कि जोक्स नहीं है, क्योंकि एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य।
1: कार्टून्स में बिल्कुल,
0: कि कार्टून कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
1: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है। यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो, जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही, उस दौर में भी और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज बनाकर आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है। जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है, ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
0: बहुत बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के प्रति।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है, जहाँ ऐसे में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
1: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफ़ी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है, ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है। क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
0: और आज भी इसकी उपयोगिता
1: उपयोगिता इसकी बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि

0: अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा या किसी चूहे को हंसते नहीं देखा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
0: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है। जैसे कि कोई समस्या है, मान लीजिए उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है और उस शुष्क भी होता है वो, लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहां जानी है वो पहुंच जाएगी।
1: बस बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून। हाँ, तो एक दो अपने कार्टून के बारे में बताइए आप, कि जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
1: जी।
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये तीन फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उन्होंने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे एस बी बाला सुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस वही प्यार है। हाँ।
1: बहुत सुंदर और गहरा गीत है, एक दार्शनिक गीत है, कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत सुंदर।

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स है जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: शुक्रिया।
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए,
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता
1: जी,
0: है, चाहे वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत ज़रूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को ज़रूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहाँ तक पहुँचेगी।
0: सबसे तो बड़ी बात
1: ये बहुत ज़रूरी
0: मतलब
1: है,
0: दिमाग की खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: सबसे बड़ी बात ये कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से

0: जुड़ने के लिए वैसा बनना
1: हाँ,
0: पड़ता
1: वैसा
0: है।
1: बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो हाँ। वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल, पेन, ब्रश, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है। बस ये बेसिक तो यही है, बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं, हाँ जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू होगी यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज़ है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है। और सीमा
0: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं?
1: हाँ, ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए। वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु, सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज़ बहुत बुरी है। तो कार्टून में इन चीज़ों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
0: ये एक सीमा रेखा है।
1: हाँ, ये सीमा रेखा है किसी का।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है।
0: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विदा है, बहुत गहरी विदा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार भी
1: देखते
0: पढ़ते
1: हैं,
0: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
1: सही बात है।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
1: तू चंदा मैं चांदनी।
0: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी, बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें, जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं अभी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी,
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। तो एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं ये कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज़ है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीज़ें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज़ बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
1: पहले
0: तो वहीं खड़े रह जाते हैं।
1: बस।
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रही हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा,
1: विचार भी बदला है, और उनमें विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना, एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, उसका मजा आता है।
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो, आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था, शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद उस सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के उसकी दास्ता से मुक्त कराएं, पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें हैं,
0: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई कि जो ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है, आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही और उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस उसको ये उसमें दिखाने की कोशिश है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। ये
0: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब तक?
1: जी जी जी जी।
0: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं। इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और आ ही गए। हमें कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात। मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है,
1: जी हाँ।
0: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही है 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी,
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं, एक गीत सुन लेते हैं। गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
0: बहुत सुंदर गीत है ये।
1: हाँ, अमित कुमार और आशा भोसले जी की आवाज है।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियाँ छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब चार दिन की तो ये बारिश है और ये वो इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे चार दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि चार दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं।
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया, वो क्या, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ।
0: तो ये निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी

0: पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप दिन में इतने आपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं, तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे, सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भावताव होना, ये सब चीजें तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी
1: तो,
0: जी
1: तो ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उसे
0: बिल्कुल, यानी कि कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहाँ कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें। और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की ज़रूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की ज़रूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं
0: जी,
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफ़ी हर चीज़ में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं, तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश की कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता हाँ, नहीं है
1: उतनी नहीं,
0: लेकिन
1: है।
0: लोगों में जागरूकता बहुत,
1: जागरूकता बहुत है,
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो
1: हाँ, हाँ।
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
1: नहीं होते हैं। तो जैसे हम बता दें कि हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की है तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो

0: टूट रहे हैं, और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
1: बिल्कुल
0: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है। तो उन चीज़ों को लेकर कि ये रिश्ते ना टूटें, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को। तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज़ में ऐसे तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो, और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें,
1: जी
0: सुधार में।
1: जी बहुत
0: ये
1: सुंदर,
0: बात है।
1: बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि
0: जी
1: माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं,
0: हाँ
1: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत ज़रूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है, और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी समाचार।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
0: की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार के गाए गीत से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम है महान।

ये थे किशोर कुमार फिल्म महान में। हेट लव स्टोरी 3। अब सुनिए इस फिल्म का गीत अमाल मलिक के स्वर में, बोल मनोज मंतुसर के, संगीत बामन का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले का गाया पुराना मंदिर फिल्म का गीत, संगीत अजीत सिंह का बोल अमित खन्ना के।

तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शोले।

0: उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक का गाया गीत, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्म का नाम दिल क्या करे।

अभी आपने सोहम का गाया मेट्रो फिल्म का गीत सुना। सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी प्रीतम ने। और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपके साथ। इस फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: प्रसारित करेंगे 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल में लेखक और निर्देशक मदन मोहन खन्ना का लिखा प्रहसन सुनिएगा मोहब्बत का इम्तिहान।

रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अक्षय कुमार पर। रात 10 छायागीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम, अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। जागो सुबह हो गई, आप ये कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 5:00। संगीत सहिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। कलाकार होंगी गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। कल आप इसकी 10वीं कड़ी सुनेंगे। समय होगा सुबह और शाम 6:45 पर। पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:30 पर। त्रिवेणी आप रोजाना सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः प्रसारण दोपहर 2:00। नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक का समय होता है सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार कल ही कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता और निर्देशक महबूब खान पर। समय सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। रंग तरंग प्रसारित करेंगे सुबह 11:00। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर आएंगे दिन में 1:00। सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर। दिन में 3:00 बहने सखी सहेली में सुनेगी कहानी पद्मश्री की जो धैया बाई बैगा। शाम 4:00 आपके फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश।

तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक विजय तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। रात 8:00 हवा महल में लेखक और निर्देशक गुरमीत रामलमीत की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी मुबारकबाद।

आपके लिए ये कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रात 9 बजे। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी संगीता श्रीवास्तव। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रम।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम संध्या रंजन। महेंद्र कपूर और साथियों को सुनिए फिल्म अनमोल सितारे में। बोल लिखे हैं प्रदीप ने।

0: जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी।
1: नमस्कार, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में सभी सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने की गायकी की बात हो रही है, हमने इसकी आलाप की कुछ जो खासियत है उसके बारे में सुना है।
2: जयंत जी, वैसे भी देखा जाए तो कौन सा भी राग होने दो, आलाप ये राग का एक प्राण है।
1: जी जी,
2: राग की पहचान होती है तो आलाप से होती है। तो आलाप का जो विस्तार है वो हमारे घराने में बहुत, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी,
2: आलाप से राग का विस्तार करना किराने घराने में गायन की शुरुआत एक शांत, धीमे और विस्तृत आलाप से होती है।
1: अच्छा,
2: इससे राग का स्वरूप धीरे धीरे श्रोता के सामने प्रकट हो जाता है। यानी विलंबित लय होने के कारण वो आलाप प्रधानता, यानी एक एक आलाप, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक एक एक स्वर पर जाके, यानी विलंबित आलाप, लय भी विलंबित।
1: जी जी जी,
2: आलाप तो आराम से होते हैं, आलाप को हम तान का ये नहीं दे सकते। तो जिससे प्रत्येक स्वर को पूरा समय और महत्व मिल सके, ऐसा ही विलंबित लय लेकर ये आलाप आगे जाता है। इस घराने में तानों की अपेक्षा स्वरों की शुद्धता, मधुरता और सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाता है।
1: जी।
2: और अगर तान भी अच्छी होनी है तो आलाप अच्छा होना है। आलाप अच्छा होना है तो सुर को पक्का करना है।
1: जी।
2: सुर पक्का है, एक स्वर पक्का हुआ तो दूसरे स्वर जब हम जाते हैं, दूसरा स्वर अगर पक्का हुआ तो ही उसके आगे का स्वर पक्का लगेगा, नहीं तो आगे का स्वर नहीं लगेगा।
1: अच्छा,
2: मींड और सूक्ष्म श्रुति का प्रयोग जो हम करते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर तक, अत्यंत कोमल और प्रवाहपूर्ण मींड हमारे गायकी में ली जाती है। तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग करके राग का भाव उभारा जाता है। इसीलिए इसकी जो कलात्मक तरह है ना, ये तो किराना घराना में एक विशेषता है। एक एक स्वर का विस्तार करना, प्रत्येक स्वर का ठहर ठहर कर उसकी पूरी मधुरता गहराई के साथ प्रस्तुत किया जाता है, इसे ही स्वर विस्तार की विशेषता हम मानते हैं और उसे माना जाता है। आलाप का उद्देश्य केवल स्वर दिखाना नहीं, बल्कि राग के भाव, रस और वातावरण को श्रोता तक पहुंचाना होता है।
1: जी।
2: हम कहते हैं कि स्वर जो है उसको अर्थ हम नहीं दे सकते, लेकिन राग में जो वादी संवादी रहते हैं, राग का जो रस रहता है, राग का जो हम करुण रस, भक्ति रस रहता है, इसके ऊपर राग का स्वभाव होता है।
1: जी, जी, जी।
2: वही स्वभाव के द्वारा हर एक स्वर में राग के वो प्रकट होता है।
1: अच्छा।
2: इसीलिए मीनिंगफुलनेस जो है ना राग में, शब्द का है ही लेकिन स्वर का भी मीनिंग होता है। धीरे धीरे विकास करके राग का विकास क्रमबद्ध हम करते हैं, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक की ओर बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है।
1: जी।
2: तो फिर संयमित तानों का भी प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, आलाप के बाद जब तान आती है ना, परंतु राग की गरिमा और स्वर सौंदर्य को बनाए रखते हुए ये तान हम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप ये आलाप प्रधान शैली,
1: जी,
2: और आलाप प्रधान शैली और उसमें जो शांत रहने के एक तरीका है,
1: जी,
2: वो सुन के ही उसके महसूस कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: हमारे किराना घराने के और भी बहुत अच्छा कलाकार है कैवल्य कुमार गुरव। कैवल्य कुमार गुरव जी का गाना जो है,
1: जी,
2: उसमें ये आलाप प्रधानता बहुत ही अच्छी तरह से वो करते हैं। उनका अभोगी थोड़ा सुनेंगे।

0: अभोगी राग है तो स्वर भी बहुत प्यारे है अभोगी के, और एक बहुत अच्छा गाना है, तू फिक्र को धुएं में उड़ा।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
2: मैं जिंदगी

0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आपने ट्यून किया है विविध भारती का मुंबई केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

ये थे पंकज उदास फिल्म बाजीगर में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मन्नर उदास की फिल्म का नाम हीरो।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में आप सुनिए आनंद राज आनंद का संगीत बद्ध किया और गाया गीत। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्म का नाम हद कर दिया आपने।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अभी आपने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म सड़क में सुना। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। जयमाला कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं ईमानदार फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और आशा भोसले की स्वर में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश चांदनी फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और बाबला की, संगीत शिवहरी का, बोल आनंद बख्शी के।

0: देव दर्शन धूप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।
0: देव दर्शन धूप।
1: गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने भीम पलासी पर आधारित फकीरा फिल्म का गीत सुना। अब सुनिए राग भटियार पर आधारित सुरसंगम फिल्म का गीत। आवाजें पंडित साजन मिश्र और एस जानकी की, गीत रचना की है वसंत देव ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया राग बसंत पर आधारित स्त्री फिल्म का गीत। आवाजें आशा भोसले और साथियों की, गीतकार हैं भरत व्यास।

0: इंद्रधनुष के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग अनुराग।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
0: आपने ट्यून किया है विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सिंघम फिल्म का गीत। अजय अतुल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, आवाजें श्रेया घोषाल और अजय कोगावली की।

अभी आपने सिंगम फिल्म में श्रेया घोषाल और अजय गोगावले को सुना। अब सुनिए जतिन ललित के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत। आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की फिल्म का नाम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
8: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में सैयद कादरी का लिखा गीत, आवाज के की फिल्म का नाम भूल भुलैया।

अभी आपने प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत सुना। आवाज श्रेया घोषाल की थी। फिल्म का नाम था मेट्रो इन दिनों। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मुस्तफा जाहिद की आवाज में। बोल लिखे हैं सैयद कादरी ने, संगीत जीत गांगुली का। फिल्म का नाम ब्लड मनी।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है।

0: इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो ट्रेन बन रही है, वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है, वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है। और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका, स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
5: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई

0: आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
6: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार

0: 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम आखिरी खत।

ये थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर फिल्म अभिमान में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। अब सुनिए प्रेम पर्वत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने, संगीत जयदेव का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया वासना फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

चंबल की कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने, और आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: मन चाहेगी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपहले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6, तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपया इनाम। सुनो।

आए इस नए एक्टर को लोगों ने शुरुआत से ही खूब प्यार दिया। अपने स्टंट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं चांदनी चौक में जन्म हुआ उनका और पले बढ़े। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और माता का नाम अरुणा भाटिया है। पिता पेशे से भारतीय सेना में अधिकारी थे। अक्षय के पिता को कुश्ती में भी रुचि थी और अक्षय कुमार भी खेलों में खूब रुचि रखा करते थे।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम

करते रहे जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

इस फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशवराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में एतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एंड इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंगर्स किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से, डॉक्टर

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माय गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे तीनों सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माय गॉड 2

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़ कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय। कुमार भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छाया की।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: रख कर भूल गई हूँ, हाँ मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ, ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरे दो, मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

0: छाया गीत कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब। और मैं भूल गई हूं सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूं। अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की